Listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive Geo Binda.

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: Awesome.

Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per paye free cash vouchers.
3: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

सुबह सुबह इस गाने से शुरुआत बस इसीलिए की गई है ताकि आपको ये बताया जा सके कि यार लाइफ ना एक सफर है और ये जो लाइफ लिखी गई है ये एक सफरनामा है। हाँ जी, आपकी कशिश हूँ मैं और यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। सो आज बहुत सारी अमेजिंग बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं, आपको इंटरटेन करने वाली हूँ मैं, न्यूज़ बताने वाली हूँ और कुछ फ़नी बातें करेंगे, कुछ बॉलीवुड की बातें करेंगे, इन शॉर्ट हर तरीके की, हर प्रकार की, हर टाइप की बात जो है वो यहाँ पर होने वाली है। फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है गाने जो है वो रोकने नहीं चाहिए, सो इसीलिए वॉल्यूम बढ़ाकर हमारा अगला वाला जो गाना आ रहा है वो आपके रेडियो सेट्स पर इंजॉय कीजिए। बाकी जो है आज के फ़न के लिए, आज की मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए रेडी हो जाइए आपकी कशिश के साथ। मैं यहीं पर हूँ, यहीं मिलूँगी आपसे, सो स्टे ट्यून्ड रहिए और जल्दी से हाय हेलो गुड मॉर्निंग कोई मैसेज तो दीजिए मुझे 3311063 पर। फिलहाल ये गाना पुराने दिन आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जियो बिंदास।

0: जुबिन नौटियाल जी, आपका ये जो तरीका है ना, आपका ये जो आइडिया है लोगों को पानी जो है पिया या नहीं पिया याद दिलाने का, बहुत अच्छा लगा मुझे। पिया पिया पिया पिया पिया
1: ये छोरी
0: हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश यहाँ पर आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग। एंड देखिए यार, मैं तो कूल हूँ लेकिन ये मौसम जो है ये उतना कूल हो नहीं पा रहा है। कल मेरी मम्मी से जो है मैं रात में वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मौसम आ ठंडा हो गया है क्या, कैसा चल रहा है। मैंने बोला मम्मी ठंडा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से, वो इंडिया में है ना, तो उनके हिसाब से ठंडा मतलब बहुत चिल्ड हो जाता है। यहाँ पर हमारे लिए ये 30 degrees भी बहुत बढ़िया है। वैसे आज का अगर मैं मौसम देखना चाहूँ तो काफ़ी क्लाउडी रहने वाला है। एंड सुबह भी जब मैं आ रही थी ना, तो हर रोज़ मेरी एक आदत है कि मम्मी को पापा को ये ऐसे बताती हूँ कि मैं निकल गई हूँ ऑफिस के लिए, उन्हें रास्ते में जो है अच्छे से मस्त सनराइज़ की जो वीडियो है वो बना के उन्हें भेजती हूँ, एंड उन्हें समझ आ जाता है कि अच्छा ये निकल गई है। सो आज मैं देख रही थी ना, आसमान आज जो है वो अलग कलर का हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेंट किया है। थोड़ी सी धूप, ज्यादा क्लाउड्स, सो आज का जो मौसम है वो थोड़ा सा क्लाउडी रहने वाला है, ऐसा तो जो है मिनिस्ट्री ने भी कहा है। एंड इसके बाद अगर मैं कहूँ तो दोहा में इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 30 degrees Celsius, और आज का लोएस्ट टेम्परेचर यही रहने वाला है। आज का हाइएस्ट टेम्परेचर 36 degrees Celsius रहने वाला है। एंड वैसे तो बारिश होने की कोई आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी क्लाउडी क्लाउडी सा रहने वाला है। तो अगर आपको उम्मीद थी कि आज सूरज देख लेंगे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज आसमान बहुत अच्छा दिख रहा है। तो क्यों ना आप लोग मुझे जो है बादलों की, आसमान की कलरफुल और प्यारी प्यारी फोटोज खींच के भेज दें और मेरा दिन बना दें। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए एंड एक प्यारी सी फोटो जो है इन बादलों की, इन आसमान की मुझे भेज दीजिए। बाकी कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम है जन्नत, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग of the hour.

देयर समथिंग अबाउट सोनू निगम जी की आवाज की कुछ ना कुछ ऐसे अलग सा ऐसे होने लग जाता है। ये छोरी हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी आपकी कसू जो है यहाँ पर आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। एंड आप लोगों से जो है बस इतनी सी इल्तिजा करती हूँ हर रोज की, बस प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो कर दीजिए। बहुत सारे लोग मुझे जो है इस वक्त बादलों की आसमानों की फोटो भेज रहे हैं, लेकिन वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले जो है हम हमारे गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस पढ़ेंगे। सो हमें जो है सैम्स जी ने लिखा है, अ वेरी गुड मॉर्निंग कशिश, बच्ची बुरा ना मानो बट आप अच्छा आपका टीथ कैसा है। ओके, कितना अच्छा लगता है मुझे जब कोई ये छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करता है। मेरा टीथ बिल्कुल ठीक है, मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से जो है थोड़ा सा स्क्रैच आया है मेरे टीथ्स पे, जिसकी वजह से मेरी जो टंग है वो उस पे बार बार टच हो रही थी एंड मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था एंड मेरे वर्ड्स भी जो है वो स्लिप हो रहे थे। सो अब थोड़ा बेटर है, आप लोगों को शायद सुनने में जो है वो अच्छा लगेगा, बट ठीक है अगर आप लोगों को कोई फ़र्क समझ आया तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। बहुत सारे लोग जो है हमें प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ भेज रहे हैं एंड जो है सब ने कहा है गुड मॉर्निंग। सो निज़ाम उल्ला जी ने भी कहा है हमें, दिस मोमेंट इज टाइम वॉज क्रिएटेड जस्ट फॉर यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। बस आप सबके प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं जो मुझे जो है अच्छा काम करने में हेल्प करते हैं। बाकी अपनी हेल्थ अपडेट जैसे इन्होंने पूछी सैम जी ने, वैसे ही मैं आपको भी दूंगी कि और क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है मुझे, मैं कभी भी सेम जो है चीज़ रिपीट नहीं करती। फिलहाल अफसाना बना के भूल ना जाना गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए हिमेश रेशमिया जी की आवाज़ में। मैं हूँ आपकी कशिश, थोड़ी सी देर में आप सबकी जो है अमेजिंग वाली बादलों वाली पिक्चर जो है वॉलपेपर वर्दी फोटोज़ जो है वो हम देखने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी फोटो क्लिक कीजिए एंड भेज दीजिए 3311063 पर। ये गाना इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जी।

बहुत ही प्रिटी वाला सॉन्ग शेफ मूवी से अरमान मलिक की आवाज में आपने एंजॉय किया. मैं हूँ आपकी कशिश. ये छोरी कशिश हाँ जी आपकी खूब सी छोरी आपकी कशिश यहाँ पर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई है, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाया. आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं किस किस ने मुझे जो है इस बोरिंग स्टूडियो से जो है वो बचाया है एंड बाहर का नजारा जो है वो दिखाया है. सबसे पहले तो संधू जी ने बहुत ही प्यारी सी फोटो भेज दी है, आसमान की ऐसा लग रहा है किसी ने पेंट किया है. थैंक यू सो मच. उसके बाद यासीन जी ने भी बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो भेजी है. जुल्फी जी ने जो है गुड मॉर्निंग कहा है, गुड मॉर्निंग. एंड शशिकांत पाटिल जी ने भी एक बहुत ही प्यारी गुड मॉर्निंग वाली फोटो जो है वो हमें भेजी है. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड उसके बाद मोहम्मद अरमान ने जो है वो हमें गुड मॉर्निंग कहा है. सो गुड मॉर्निंग अरमान जी, आप कैसे हैं? एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तो चलिए एक मौका और दे देते हैं. अभी अभी जिन लोगों ने हमें सुनना शुरू किया है, आप लोग मुझे इस बोरिंग स्टूडियो की चार दीवारी से जो है वो बचा सकते हैं एंड अपनी आंखों से मुझे बाहर का नज़ारा दिखा सकते हैं. तो ज़रा जो है अमेजिंग वाला नज़ारा मुझे दिखाइए. मैं आपको अमेजिंग वाले गाने जो है वो सुनाती हूँ. वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए ये ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: टेन मैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
2: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

बहुत ही प्यारा वाला गाना वजीर मूवी से आया आपके रेडियो सेट्स पर, और ये गाना कोई मुझे डेडिकेट करे या ना करे, मैंने तो खुद को ही डेडिकेट कर लिया है। ये छोरी कशिश, देखो यार एक बार जो है मैं वैसे ही बहुत हवा में रहती हूँ, और एक बार मैंने सूट पहन लिया ना तो फिर मेरा एटीट्यूड जो है वो एकदम 12th फ्लोर पे रहता है। अब आप छनन छनन से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मैंने एथनिक पहना है, नहीं समझ आ रहा है। सो ऐसे छनन छनन चीजें जो है मैं पहनती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बात तो ये है कि जो है संभाला नहीं जो आ रहा है ये सूट, कहीं अभी आ रही थी मैं अंदर दरवाजे में दुपट्टा फंस गया है। बॉलीवुड वाला सीन बहुत बढ़िया लगता है लेकिन आप जब लेट हो रहे होते हो तब जो है थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इरिटेशन होने लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, नज़ाकत जो है हम धीरे धीरे करके अपने अंदर लाएंगे एंड ऐसे ही गाने खुद को डेडिकेट करते जाएंगे। लेकिन तब तक जो है सबसे पहले आपसे जो है हम ब्लैकबोर्ड स्टोरी वाला सवाल पूछेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, बिंदास मॉर्निंग आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आज ब्लैकबोर्ड स्टोरी का सवाल बड़ा ही सिंपल सा होने वाला है, बायोलॉजी से जो है रिलेटेड होने वाला है। सो अगर आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, एंड अगर उससे ज़्यादा बड़े हैं तो और ज़्यादा ईजी होगा। तो देखते हैं आप इन सारी क्लासेस और कशिश से कितने ज़्यादा स्मार्ट है। सो बायोलॉजी का बस इतना सा सवाल है कि एक ह्यूमन बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, एक ग्रोन अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं, और क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब तो बहुत ईजीली मैंने बता दिया कि एक ह्यूमन जो है अडल्ट ह्यूमन, फुल ग्रोन ह्यूमन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। यार ये तो अब मीम बन चुका है, कितनी मूवीज में आ चुका है, ये तो बहुत ही कॉमन है यार, ये तो मुझे भी पता है। 3311063 पर मुझे मैसेज करके बताओ कि आंसर क्या है। बाकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना, प्यार मांगा है तुम्ही से, आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।

0: माशाल्लाह, तो आज आपको कहना चाहिए मुझे देख के और इस मौसम को देख के, क्योंकि दोनों ही कमाल के हो रहे हैं। अब देखो यार, बाहर टेम्परेचर क्या हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे पिक्चर्स भेजी है वो देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बाहर मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है। एंड मैंने मौसम अप्रोप्रिएट कपड़े पहने, तो आज मेरी पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पे आप जरूर देख पाएंगे, क्योंकि मैं खींचने वाली हूँ इंशा अल्लाह। ओके, फाइनली जो है आज मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि यार एक बात बताओ कि ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, अडल्ट ग्रोन ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें आंसर दिया है, आइए देखते हैं किस किस ने आंसर दिया है। उसके सबसे पहले हमें आवीज जी का जो है मैसेज आया है, सो उनका आंसर बिल्कुल सही है। मैं आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि हम जो अभी हमें सुन रहे हैं वो लोग भी आंसर कर सकें। सो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हैं। बानी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड सतीश जी ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद एस के इंसान अहमद जी ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है, यासीन अब्बासी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड लियाकत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों की फोटोज जो है वो अभी भी मेरे पास आ रही है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद कूल एबीएस जी ने जो है, आपका नाम क्या है सर? ओके, अनिल प्रताप अमर सिंह जी ने जो है वो हमें बता दिया है आंसर, थैंक यू सो मच। एंड रेवा जी का आंसर आ गया है, एंड उसके बाद सर सयाफ जी का जो है वो मैसेज आ चुका है, एंड ऐसे ही सबके मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं। आप जो है अपने मैसेजेस अभी भेज सकते हैं, हम थोड़ी सी देर में एक बार और जो है मैसेजेस पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आंसर क्या है। एंड ये सब जो लोग सही आंसर दे रहे हैं इनका आंसर क्या है, सो 3311063 इज द नंबर, जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए, ऑडियो नोट भेज दीजिए। एंड फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है वो एंजॉय करके फटाफट आ जाइए। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हाँ जी बिल्कुल, आपको इजाजत है, आप भी मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखभाल की कीजिएगा, वरना जो है सर में दर्द, दिल में दर्द जो है वो होता रहेगा। एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी मूवीज इतनी देखी है कि मैं बता सकती हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड चाय पीने के बाद फुल एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ मैं, तो अब मैं आपकी लाइफ को जो है और ज्यादा बिंदास बना सकती हूँ। देखिए यार, एक सवाल आपसे पूछा था मैंने कि यार ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं। आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, 206। एंड अभी जो है इदरीस जी का मैसेज आया है हमें, एंड उन्होंने जो है बहुत ही प्यारी सी फोटो जो है वो हमें भेजी है, तो थैंक यू सो मच इदरीस जी। एंड आप सबके आंसर जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं, इरफान जी ने भी एक ऑडियो नोट भेजा है, एंड 206 हड्डियां जो हैं वो होती हैं, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने प्रूव कर दिया है कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कशिश से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। बल्कि यार मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये जीके क्वेश्चन जो है ये मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए पूछती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है, मैं पूछती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ओ ये वाली बात तो मुझे नहीं पता थी, ये तो सबको नहीं पता होगी, मैं पूछ लेती हूँ। एंड आप सब बिल्कुल सही सही आंसर्स दे देते हैं, सो कोई बात नहीं, मैं अपनी नॉलेज ऐसे ही बढ़ाऊंगी। एंड अगर आपके पास कोई सवाल हो ऐसे जनरल नॉलेज से, क्या बोल रही हूँ मैं आज, जनरल नॉलेज से जुड़े हुए आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप जो है मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं जो है अगले दिन उसे ज़रूर से अपने शो में बाकी सबसे पूछेंगे, एंड देखेंगे कि आपके आपका जो सेट किया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये बाकी सब जो है ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए। बाकी आने के बाद मैं बताऊंगी कि मिनिस्ट्री ने किस चीज के लिए जो है वॉर्न किया है, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो पिटास।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।
5: सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली, फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा, मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी, चलने को जगह

लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने जो है वार्न किया है इस 12 अक्टूबर को कि गैस्ट्रो जीरो फाइटो फाइबर नाम की एक ड्रिंक है जो लेबोरेटरी जो टेस्ट है उसमें फेल हो गई थी, एंड इसका जो सेलिंग है वो कतर में पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड हो गया है, ऑथोराइज नहीं है। सो अगर आपको ऐसा जो है कहीं सोशल मीडिया पे जो है क्योंकि इसे प्रमोट किया जा रहा है तो दिखता है, तो इसे कृपया इग्नोर कीजिए। ठीक है, सो ऐसी हेल्थ अपडेट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है आपको देती रहती है, सो ऐसी चीज़ों के लिए अवेयर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो है चांद गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
3: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

यार देखो, वैसे तो मैं ना ऐसे किसी भी रैंडम चीज से जेलस नहीं फील करती हूँ, लेकिन आज जो है सोशल मीडिया खोलते ही मुझे जो है जेलसी हो गई। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी आपकी कशिश हूँ मैं, और यहाँ पर लेकर आ गई हूँ आपके लिए बिंदास मॉर्निंग। एंड मुझे जो है जेलसी किसी लड़की से नहीं हुई, किसी कपड़ों से, किसी की लाइफस्टाइल से नहीं हुई, मुझे जो है उन लोगों

0: से जलसी हो गई जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे बारिश की वीडियोस डाली है, एंड वो भी कतर की वीडियोस डाली है। हाँ जी, सो कल जो है ऐसा वीडियोस में दिखाई दे रहा है कि कल जो है यानी ट्यूसडे के दिन जो है काफी सारी जगहों पर कतर में बारिश हुई थी, एंड ऐसी ऐसी बारिश नहीं, अच्छी वाली बारिश की वाइपर जो है वो चलाने पड़ गए। सो ये जो वीडियो सरफेस हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, इसमें जो है साहब जो है वीडियो बना रहे हैं एंड उसमें कार में बैठे हैं एंड उसमें वाइपर चल रहा है एंड बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है, एंड मुझे जो है थोड़ी सी जल्दी सी इन जनाब से जो है वो हो गई थी। वैसे क्या आपके यहाँ बारिश हुई है या ये जो जनाब है पुरानी वीडियो जो है वो सरफेस कर रहे हैं, बताइए मुझे 3311063 पर कि क्या ये न्यूज़ सही है, क्या सच में कई जगहों पर बारिश हुई है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ अमेजिंग गाने इंजॉय करते हुए कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
2: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
1: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थीं।
3: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
2: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
4: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
5: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
6: यस बेबो।
5: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
6: यस।
5: कैच क्या है?
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
5: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
6: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
8: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
9: In association with
10: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

देखो वैसे तो मुझे कल का भी नहीं पता होता है, मुझे ना अभी 2 घंटे बाद का भी नहीं पता है कि आखिर मैं खाने क्या वाली हूँ या मैं कहाँ जाने वाली हूँ या मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन दिसंबर का प्लान जो है वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कुसी छोरी, आपकी कशिश, एंड आपके लिए जो है लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब दिसंबर में क्या हो रहा है ये आप पूछेंगे, कितनी बार बता चुकी हूँ मैं SRK की यानी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड इस दिसंबर जो है उनकी मूवी किंग रिलीज हो रही है जिसमें सुहाना खान जो है वो भी हमें दिखने वाली है, एंड रिपोर्ट्स की माने तो आधा बॉलीवुड जो है वो हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। सो बस दिसंबर में जो है ये मूवी मैं देखने के लिए जाऊंगी। वैसे इसकी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये है कि सुहाना के साथ शाहरुख खान का एक बहुत ही बढ़िया डांस वाला गाना जो है, डांस वाला नंबर जो है वो शूट हो चुका है फिल्म सिटी में, बहुत बड़ा जो सेट है मुंबई में वो बनाया गया था, एंड फाइनली जो है आखिरी जो स्केड्यूल है इस मूवी के शूट का वो हो चुका है, एंड दिसंबर में रिलीज जो है वो होनी है। तो जल्दी से अक्टूबर में जो है इसकी शूटिंग को एंड करने के बाद एडिटिंग का काम शुरू हो जाएगा, एंड हमें जल्दी ही सारी चीजें जो है वो देखने को मिलने वाली है। मैं तो जो है ट्रेलर के लिए ही काफी एक्साइटेड हूँ और गानों के लिए उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो आप जो है बताइए मुझे कि आप कितने एक्साइटेड है। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

यार मैं वैसे तो जो है मुझे कतर में आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, अभी दोहा में रहते हुए मुझे जो है मुश्किल से 6-8 महीने हुए होंगे, लेकिन फिर भी कतर की हर अचीवमेंट में जो है मुझे अलग टाइप की खुशी सी होती है। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी आपकी कशिश हूँ मैं, और आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए, कतर रेल ने जो है ग्लोबल लाइट रेल अवार्ड 2026 में वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जीत लिया है। हाँ जी, ये अवार्ड जो है दोहा मेट्रो और लुसेल ट्राम नेटवर्क को जो है दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एकदम बढ़िया एकदम बेहतर रेन वाला काम किया है। और कतर रेल के सीईओ मोहम्मद अल अंसारी ने लंदन में जो है सेरेमनी के दौरान जो है अपनी टीम के साथ अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ जो है ये अवार्ड एक्सेप्ट किया। एंड मुझे लगता है यार बात तो सही है, क्योंकि मेरे भोपाल में भी जो है जहाँ से मैं हूँ इंडिया में वहाँ पर भी मेट्रो बनी है, लेकिन वहाँ की मेट्रो में ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ आके मुझे पता चला कि अच्छा मेट्रो ऐसी भी होती है। बाकी ग्रेट यार, मुझे ना काफ़ी बढ़िया लगता है जब मैं ट्राम देखती हूँ, जब मैं मेट्रो देखती हूँ, जब इतना अच्छा कनेक्शन देखती हूँ। इट्स रियली नाइस एंड कंग्रेचुलेशंस कतर एंड सारी मैनेजमेंट टीम को ये अवार्ड जीतने के लिए। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
2: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

ब्रो फेस्टिव सीजन आ गया है, अब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते ऐसा लगता है कि यार हम इतने अच्छे कैसे दिखें। आप अपनी एग्जिस्टिंग कपड़ों को ही जो है रीस्टाइल करके अच्छे दिख सकते हो। ऑफ कोर्स न्यू आउटफिट्स जो है वो आप जो है ऐसे खरीदिए कि उसे जो है सालों साल एक दूसरे के साथ ऐसे पेयर करके जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, अगर आप एक हॉट पिंक कलर का गारमेंट लेते हैं, उसे जो है एक ब्राइट ऑरेंज के साथ पेयर करते हैं, उसमें एक अच्छा सा पिस्ता ग्रीन जो है, ब्राइट पिस्ता ग्रीन जो है वो ऐड कर देते हैं, सो ये एक अनएक्सपेक्टेड सा एक शीक सा आउटफिट बन जाता है। अब देखिए यार, इसमें आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस और थोड़ी सी जो है फैशन एस्थेटिक्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे पहन लें कि यार ग्रीन कलर का बॉटम, ऑरेंज कलर का दुपट्टा और पिंक कलर का कुर्ता मैं पहन लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े प्रपोर्शन का ध्यान रखना, आप रेडियो पर मैं आपको दिखा नहीं सकती ना। सो 3311063 पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सारे जो कलर कॉम्बिनेशन के चार्ट्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगी। बाकी हम जो है ऐसे ट्राई ऑन चैलेंजेस जो है वो करने वाले हैं अभी फेस्टिव सीजन से जुड़े हुए। सो आप जो है हमें फॉलो कर सकते हो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर, जल्दी से फॉलो कर लो, वहां पर ऐसे बहुत सारे फैशन टिप्स जो है अब आपके लिए आते रहेंगे। मैं हूं आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए मेरे साथ जियो बिंदास।

0: All F Short Break. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
4: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
5: In association with
6: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: आज कौन सा डे है जरा देखूं तो मैं। अच्छा आज वेंसडे है, लेकिन वेंसडे के साथ आज और कौन सा दिन है? आज है इंटरनेशनल आई लव यू डे। सो अपने लव्ड वंस को आज आई लव यू बोलने से बिल्कुल भी कतराना मत। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है मैं बिंदास बना रही हूँ। एंड बोरिंग बोलते हुए मैं इसलिए रुक गई क्योंकि यार अब तक तो हम आधा शो जो है वो बिता चुके हैं। सो अब आपका दिन जो है वो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। सो अपने लव्ड वंस को जो है आज आपको आई लव यू बोलना है। एंड आज क्यों यार, हर रोज जो है आप जिनसे भी प्यार करते हैं उन्हें आई लव यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत गिवन है, हम अगर नहीं बोलेंगे आई लव यू तो भी चल जाएगा क्योंकि सामने वाले को पता तो है। अब पता तो सबको ये भी है कि यार पानी पीना होता है, बट आप बार बार बोलते हो ना कि पानी पी लो पानी पी लो। आपकी लव लैंग्वेज जो है वो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे जो है बार बार उन्हें बोलते रहना, उन्हें बताते रहना इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके आपकी मदर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स को हम इतना अंडररेट करते हैं ना कि यार इनको क्या बोलना है, इनके सामने थोड़ी ना बोलूंगा मैं, इतना इमोशनल थोड़ी ना बन सकता हूं। कभी कभी इमोशंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद आप जो है एफर्ट्स अलग तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाला इतने एफर्ट्स मांगता भी नहीं है, उसको बस आपके मुंह से ये जो तीन प्यारे प्यारे शब्द हैं ये चाहिए। तो यार बस आप जो है आई लव यू बोल दीजिए, बाकी आजू बाजू मत देख बात दिल की बोल डाल। अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए। वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: Bangla's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
2: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
1: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थी।
3: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
2: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
4: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करें हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
6: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pay free cash vouchers.
7: In association with
8: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

ब्रो देखिए, थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि अपने लव्ड वंस को प्यार दिखाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड आप जो है छोटे छोटे जेस्टर्स उनके लिए करते रहते हैं, दैट्स ओके, बट आपको जो है खुल के आई लव यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जेस्टर्स करना बंद कर देंगे, सिर्फ चलते फिरते आई लव यू बोलेंगे तो हो जाएगा. जी मैं हूँ आपकी कुल सी छोरी, आपकी कशिश, एंड आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है. अब देखिए यार, कई बार क्या होता है ना कि हम आई लव यू बोल देते हैं लेकिन बाकी एफर्ट्स करने भूल जाते हैं. लेकिन लड़कियाँ जो है कंपेरेटिवली लड़कों से इन सब चीज़ों में आगे रहती हैं, वो एफर्ट्स भी करती हैं, वो जो है खुल के अपना प्यार जताती भी है. लड़के थोड़े से हमेशा ना अंदर ही अंदर बंधे रह जाते हैं, लेकिन एक प्रूफ जो है वो एक लड़की ने करके दिखाया है. रशिया की एक लड़की है, उन्हें प्यार हो गया बिहार के एक लड़के से, एंड वो ऑल द वे रशिया से जो है भोपाल क्यों बोल रही हूँ मैं रशिया से बिहार आई है उस इंसान के साथ रहने के लिए. अब उस इंसान की, उस लड़के की जो है फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी उस रशिया की लड़की ने जो है डिसाइड किया है कि भाई मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगी एंड इन्हीं के साथ अपना घर बनाऊंगी बसाऊंगी एंड हम साथ में जो है आगे बढ़ेंगे. देखिए जी, ये होती है प्यार की डिटेल्स. आप जो है ये आ गई है रशिया से बिहार तक, इंडिया तक ट्रैवल करके, और आपसे जो है दोहा से अलखोर नहीं जाया जाता है. ये तो वैसे बहुत दूर हो गया. स्टे ट्यून्ड, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: हाँ, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
3: यस बेबो।
2: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
3: यस।
2: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie free cash vouchers.
6: In association with
7: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

देखो, चाहे आपकी फेवरेट वेकेशन हो या आपका फेवरेट डेजर्ट हो, वो खत्म तो होता ही है। तो बस एक और अच्छी चीज जो आज की थी, मेरा शो जो है वो खत्म होने जा रहा है। आपसे कल होगी मुलाकात सेम टाइम पर। अब देखो, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जा रही हूँ तो कल वापस लौट कर आ जाऊंगी ना। मैं हूँ आपकी कशिश, जो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे बिंदास मॉर्निंग। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, माना थोड़ा सा क्लाउडी सा मौसम हो रहा है, लेकिन पानी पीना और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे याद करते रहना रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लो। और स्टे ट्यून्ड रहो, कहते रहो जियो बिंदास। बाय बाय, टेक केयर।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है, जहां सुबह की शुरुआत होती है कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ, थोड़ी मस्ती के साथ और ऐसे सवालों के साथ जिनका जवाब शायद आपके पास भी हो। सो यू टेल मी कि आपका वेंसडे कैसा जा रहा है। वीक का आधा हिस्से से ज्यादा निकल चुका है, कल वीकेंड आने वाला है और अब तक आपकी टू डू लिस्ट कितनी छोटी हुई है, या फिर ऐसा है कि जितने काम पूरे होते हैं उससे ज्यादा नए काम की लिस्ट आ जाती है। वैसे बात ना, नोटिस किया आपने, कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दिन खत्म होने पर भी लगता है कि आज क्या किया। सो पूरे दिन काम किया, मैसेजेस के जवाब दिए, मीटिंग अटेंड की और उसके बाद लेकिन अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाए। और शायद इसी वजह से बीच बीच में रुककर खुद से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या मैं सिर्फ बिजी हूँ या सच में उन चीजों पर समय दे रही हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं तो क्या करती हूँ, इन बिटवीन भी थोड़ा सा टाइम खुद के लिए जरूर निकालती हूँ। सो आज का दिन भी अच्छा मौका है थोड़ा रीसेट करने का। कोई बहुत बड़ा रिजोल्यूशन नहीं चाहिए आपको, बस एक छोटा सा काम जो आप अपने लिए कर सकते हैं। सो मैं हूँ मुस्कान और अगले 3 घंटे ना हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की, किताबों की, बॉलीवुड की कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स की और उन छोटे छोटे चीज़ों की जो हमारे एवरीडे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। सो आज का पहला सवाल है, अगर आपको अपनी आज की टू डू लिस्ट से एक काम हमेशा के लिए डिलीट करने का मौका मिल जाए तो कौन सा काम होगा? वो घर का काम, ऑफिस की मीटिंग, रोज के मैसेजेस, या फिर वो जो काम कोई आपके हिस्से में ऐसे ही डाल देता है जो आपका है भी नहीं? बताइएगा जरूर, नंबर इज 7333111063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास.
2: Time check.
3: Brought to you by
2: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
4: Hi, मैं हूँ दिव्या दत्ता. And you're listening to Radio Olive Jio Bindas.
5: I'm in number one, Radio Olive.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

0: सो आई नो टुडे इज 14th of October, राइट? और आज का जो दिन है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की तरह मनाया जाता है. अब आप सोच रहे होंगे स्टैंडर्ड्स की बात तो बहुत टेक्निकल है, इसमें रेडियो पर इंटरेस्टिंग मतलब क्या हो सकता है. लेकिन जरा अपनी डेली लाइफ देखिए, आपके फ़ोन का चार्जर, घर के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, कार के सेफ्टी फीचर्स, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के तरीके, इसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन स्टैंडर्ड्स की वजह से बेहतर और कंपैटिबल तरीके से काम करती हैं. इमेजिन कीजिए अगर हर कंपनी अपना अलग चार्जिंग सिस्टम बनाए, हर डिवाइस का प्लग अलग हो और किसी भी प्रोडक्ट के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की एक लिमिट ही ना हो, तो जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, राइट? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. स्टैंडर्ड्स का मतलब सिर्फ चीजों को एक जैसा बनाना नहीं होता. सो बेसिकली उनका मतलब होता है क्वालिटी, सेफ्टी और कंपैटिबिलिटी को बेटर बनाना. और यही बात हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है. क्या हर चीज के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए? वर्क प्लेस में क्वालिटी स्टैंडर्ड जरूरी है, ड्राइविंग में ट्रैफिक रूल्स जरूरी है, प्रोडक्ट्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड जरूरी है. लेकिन क्या सक्सेस, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप के लिए भी स्टैंडर्ड हो सकता है? किसी के लिए सक्सेस का मतलब अच्छी सैलरी है, किसी के लिए फैमिली के साथ टाइम बिताना और किसी के लिए अपना पैशन फॉलो करना. इसीलिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तो हमें बहुत कुछ आसान बनाने में मदद करते हैं. लेकिन हम हमारी जिंदगी में ऐसे फैसले को एक फॉर्मूले के साथ नहीं रह सकते, राइट? सो यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड कि आपकी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप हमेशा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेफ्टी, सर्विसेज या फिर कोई रिलेशनशिप में ऑनेस्टी. नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट।

सो अगर ना आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां हर कैरेक्टर थोड़ा सस्पिशियस लगता है और हर चैप्टर के बाद कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, सो आज का बुक सेगमेंट इज फॉर यू। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की और खास तौर पर फ्रीडा मैकफेडन की ऑथर एक हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल की जो आपको बहुत पसंद आएगी। साइकोलॉजिकल थ्रिलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है? ये सस्पेंस सिर्फ इस बात का नहीं होता कि क्राइम किसने किया, असली सस्पेंस ये भी होता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन छिपा रहा है और किस कैरेक्टर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सो अच्छी अगर आप किताब पढ़ते हो, थ्रिलर बुक जिसे कहते हैं, तो वो क्लूज देती है लेकिन साथ ही आपके अजम्पशंस के चैलेंज भी देखना चाहती है कि आपको अजम्पशंस मिल रहे हैं पर चैलेंज करती है। आप एक कैरेक्टर पर भरोसा करने लगते हो, फिर कोई नई डिटेल सामने आ जाती है और आपको अपनी पूरी थ्योरी बदलनी पड़ती है। और यही रीजन है कि ऐसी बुक्स पढ़ते टाइम सिर्फ कहानी नहीं पढ़नी होती, हम खुद ना डिटेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अब मैं अगर साइकोलॉजिकल थ्रिलर की बात करूं तो एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी इंसान को सिर्फ उसकी पहले इंप्रेशन से समझ लेना कितना डिफिकल्ट है। बाहर से कोई इनोसेंट लग सकता है लेकिन कहानी आगे बढ़ते बढ़ते उसका दूसरा साइड सामने आ जाता है। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में हम हर इंसान पर शक करते रहते हैं और जरूरी भी है।

लेकिन ये समझना यूजफुल है कि इंसानी बिहेवियर हमेशा उतना सिंपल नहीं होता जितना पहली बार में दिखाई देता है। अगर आप थ्रिलर्स पढ़ना चाहते हैं सो यू कैन रीड दिस बुक जिसका नाम है एक पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट, जो किसी स्पेसिफिक नई किताब को चुनने से पहले उसका करंट पब्लिकेशन स्टेटस और रिव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो आई रियली लाइक दिस ऑथर फ्रीडा मैकफ्रेडन, जो कि बहुत अच्छी किताबें लिखती हैं एंड यू विल लाइक इट, जो कि पजल की तरह लगेंगी आपको। सो आई हैव अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि आप किताब का एंडिंग पहले पढ़ते हो या सस्पेंस को आखिरी पेज तक बचा के रखते हो? मैं कभी यू नो बुक के लास्ट पेज पे नहीं जाती। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सो बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो हर फिल्म में अपना एक अलग साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी कॉमेडी, कभी इंटेंस ड्रामा, तो कभी कैरेक्टर जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और ऐसे ही है राजकुमार राव, उन एक्टर्स में से जिनकी परफॉर्मेंस पर अक्सर ये डिस्कशन होता है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को किस तरह से पोर्ट्रे किया है। आज का बॉलीवुड टॉपिक है उनकी अपकमिंग फिल्म, यस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम, ठीक है। सो जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो बने हैं, मतलब एक वकील का रोल है। सो मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी रियल लाइफ पर्सनालिटी पर फिल्म बनाते हो, चाहे वो कोई भी हो, तो वो आपके लिए चैलेंज हो जाता है। एक्टर को सिर्फ उस इंसान जैसा दिखना नहीं होता, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और काम करने का तरीका भी समझना पड़ता है। उसके बीच में बहुत बड़ी स्टडी होती है, और ऑडियंस के लिए भी ऐसी फिल्म देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि कहानी इंजॉय करने के साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि रियल इवेंट्स और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन के बीच में कितना फर्क है, फिर वो गूगल कर करके देखते हैं। वैसे बॉलीवुड में एक और इंटरेस्टिंग डिबेट हमेशा चलती रहती है कि क्या किसी एक्टर की सबसे बड़ी ताकत उसका स्टार पावर होता है, या फिर उसकी एबिलिटी की वो हर फिल्म जो बिल्कुल अलग इंसानों से बनाती है। क्योंकि कभी कभी कोई सुपरस्टार अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से फिल्म को बड़ा तो बना देता है, लेकिन कभी एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस बिना बड़े स्टोरी के दिल जीत लेती है। सो यू टेल मी, आपके लिए ग्रेट एक्टर की पहचान क्या है? उसका ट्रांसफॉर्मेशन, डायलॉग डिलीवरी, इमोशनल सीन, या फिर फिल्म खत्म होने के बाद भी उसका कैरेक्टर आपके दिमाग में रहना? और राजकुमार राव की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जो आपको सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah,

0: से एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हो, आपको कंप्यूटर कीबोर्ड्स पर सारे लेटर्स कहाँ हैं ये याद है? ऑफ कोर्स याद होंगे, क्योंकि हम रोज कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर लेटर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्यों नहीं होते? ये जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे दिमाग में हर रोज आता था, अगर कीबोर्ड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के ऑर्डर में होता तो क्या टाइपिंग ज्यादा आसान होती, और हमारे फैमिलियर ये जो नए मतलब जो भी कीबोर्ड का एक पैटर्न है, लेआउट है, टाइपराइटर के टाइम से आया है। सो शुरुआती टाइपराइटर्स में मैकेनिकल डिजाइन की अपनी एक लिमिटेशंस थी, और टाइम के साथ ये जो लेआउट है ये इस्तेमाल में इतना पॉपुलर हो गया कि वो आगे चलकर कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस पर भी स्टैंडर्ड बन गया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर कहा जाता है कि ये जो लेआउट है अभी कीबोर्ड का जो लेआउट है, ठीक है, ये टाइपिंग स्लो करने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है। कीबोर्ड लेआउट की डेवलपमेंट के पीछे मैकेनिकल डिज़ाइन, प्रैक्टिकल यूज और हिस्टोरिकल अडॉप्शन जैसे कई सारे फैक्टर्स थे, और फिर एक बार कोई सिस्टम पॉपुलर हो जाए तो उसे बदलना आसान नहीं होता, लाखों लोग उसी लेआउट पर टाइपिंग सीख चुके होते हैं, कंपनीज उसी के हिसाब से कीबोर्ड्स बनाती हैं और पूरी दुनिया उसी के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। इसे एक तरह से हैबिट और कह सकते हो कि ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन दोनों है। वैसे ये बात ना सिर्फ कीबोर्ड तक लिमिटेड नहीं है, हम बहुत सी चीज़ें इसीलिए यूज़ करते रहते हैं क्योंकि हम उनके आदी हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पुरानी चीज़ सबसे अच्छी हो, लेकिन फैमिलियर होने की वजह से उसे बदलना मुश्किल हो सकता है। सो यू टेल मी, अगर कल से कीबोर्ड का लेआउट बदल कर अल्फाबेटिकल हो जाए तो क्या आप उसे सीखने की कोशिश करोगे, या कहोगे कि यार वो पुराना वाला जो कीबोर्ड है वही रहने दो? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।
2: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट, बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर। गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट। स्प्लिट योर पेमेंट इंटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। प्लस गेट अ रिप्लेसमेंट कार फॉर अप टू 3 डेज, अ वन टाइम एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ एंड व्हीकल इंस्पेक्शन ट्रांसपोर्टेशन। चूज बीमा third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
4: गुलराज सिंह
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
4: जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट।

0: ने सोचा है कि पॉपकॉर्न का वो छोटा सा कनल गरम होते ही अचानक फूल कर कैसे यू नो इतने अच्छे से खिल के आता है। इसके पीछे एक मजेदार साइंटिफिक प्रोसेस है। पॉपकॉर्न कर्नल के अंदर थोड़ी मॉइस्चर होती है और बाहर एक रिलेटिवली हार्ड शेल होता है। जब कर्नल गर्म होता है तो अंदर के मॉइस्चर स्टीम में बदलती है और प्रेशर बढ़ने से एक पॉइंट पर शेल टूटती है और अंदर का जो स्टार्च है वो तेजी से एक्सपेंड होकर फ्लफी पॉपकॉर्न बना देता है जिसे हम खा लेते हैं। यानी कि पॉपकॉर्न का पॉप होना कोई जादू नहीं है बल्कि हीट, मॉइस्चर और प्रेशर का रिजल्ट है। यू नो, जब मैं छोटी थी तो ऐसे सवाल ना मेरे दिमाग में बहुत आते थे, लेकिन होता क्या था उस टाइम पर, गूगल नहीं था, AI नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मम्मी पापा बहुत ही अलग तरीके से चीज़ें समझाते थे और फिर जो क्यूरोसिटी है वो वहीं के वहीं रुक जाती थी। और मज़ेदार बात यह है कि हर कर्नल पॉप नहीं होता। अगर कर्नल में मॉइस्चर सही यू नो क्वांटिटी में नहीं है ना, तो वो आउटर शेल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और फिर ठीक से वो पॉप नहीं होता। तो आपने देखा होगा पॉपकॉर्न के कुछ हिस्से, जो कुछ बीज हैं, वो नीचे रह ही जाते हैं। अब सोचिए, हम मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। सो फूड के पीछे की साइंस अक्सर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। ब्रेड का राइज करना, केक का फ्लफी बनना, पॉपकॉर्न का पॉप होना, किचन में भी केमिस्ट्री और फिजिक्स काम कर रहे होते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप मूवी देखते टाइम पॉपकॉर्न पसंद करते हो, नाचोस, चिप्स, या फिर वो लोग यू नो जो पॉपकॉर्न और मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यू नो फासला बना के रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी डाइट खराब हो जाएगी। So number is same 3311063. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट, बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर। गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट। स्प्लिट योर पेमेंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास।

0: सो बॉलीवुड की अगर बात करूं तो फिल्मों के साथ साथ स्टार की पर्सनल लाइफ भी किसी ब्लॉकबस्टर से कम एंटरटेनिंग नहीं होती। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑफकोर्स लाइफ मस्त है। आपने नोटिस किया होगा सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी की एक फोटो आती है और लोग कॉमेंट्स में अपनी पूरी डिटेक्टिव एजेंसी खोलकर बैठ जाते हैं। किसने किसको देखा, किसके साथ कौन खड़ा है, स्माइल थोड़ी ज्यादा थी या नॉर्मल थी, और फिर शुरू होती है रिलेशनशिप र्यूमर्स की कहानी। कुछ ऐसे ही क्यूरियोसिटी फैक्टर देखने को मिलता है अनीत पड्डा और अहाना पांडे जैसे को स्टार्स के बीच में। सैयारा के बाद से ना ऑडियंस की दिलचस्पी सिर्फ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि लोग उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में भी बात कर रहे थे। लेकिन एक बात सोचिए, क्या दो लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप का मतलब हमेशा लव स्टोरी ही होता है, या सेलिब्रिटीज को बस दोस्तों के साथ फोटोज डालने और अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखने में उतना ही हक नहीं है जितना हम सबको है। सो ऑनेस्टली हम किसी की केमिस्ट्री पसंद कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, हम उनकी जोड़ी को स्क्रीन पर देखना चाह सकते हैं, लेकिन दोस्ती को रिलेशनशिप का नाम देना भी जरूरी नहीं है यार। मतलब हम सब डिटेक्टिव बन जाते हैं ना सोशल मीडिया पर, तो आई फील कि यार थोड़ा स्पेस देना चाहिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त के साथ या फिर आपके कॉलीग के साथ कि कोई तस्वीर देखकर लोगों ने आपको जज करना स्टार्ट कर दिया हो? मुझे बताइए, क्योंकि सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पर बहुत सारे आंसर आने वाले हैं, आई एम श्योर। नंबर है 3311063। फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप रहने देना चाहिए या अच्छी बॉन्डिंग में लोगों को लव स्टोरी ही नजर आती है? सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: टाइम चेक
2: ब्रॉट टू यू बाय
1: नानातल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुक वाकिफ अलखोर।
3: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

Now let's discuss this trend, जो हमारी work life और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है और वो है micro retirement. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम Life Must है. देखिए बचपन से हमें एक familiar formula सुनने को मिलता है, अच्छे marks लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, खूब मेहनत करो, पैसे बचाओ और फिर retirement के बाद आराम से जिंदगी enjoy करना. लेकिन आज की जनरेशन के कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि जब जिंदगी जो है वो अच्छी चल रही है तो घूमने, कुछ नया सीखने या खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए रिटायरमेंट तक का इंतजार क्यों करना भाई. इसी सोच से जुड़ा है माइक्रो रिटायरमेंट. इसका मतलब है करियर के बीच में एक प्लान्ड ब्रेक लेना, कुछ महीनों के लिए ट्रैवल करना, कोई नई स्किल सीखना, फैमिली के साथ टाइम बिताना या बस अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा समझ.

0: और आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना पड़े, तो आप क्या करोगे? वर्ल्ड टूर पर निकलोगे या फिर कोई नया कोर्स करोगे या फैमिली के साथ घर बैठ के सुकून से रहना चाहोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

So, क्या होता है ना कि बुक्स के जरिए हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगा। अब मैं बात करती हूँ सक्सेस के प्रेशर की। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि और उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लोग उनका काम अप्रिशिएट करते हैं और शायद उन्हें इसी से कॉन्फिडेंस भी मिलता होगा। लेकिन रियलिटी में किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करने का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं होता, वहाँ पर रिजेक्शन भी होते हैं, कॉम्पिटिशन भी होता है, डेडलाइंस भी होते हैं और बार बार खुद को प्रूव भी करना पड़ता है। इसी आइडिया पर बनी है एक अमेजिंग सी किताब जिसका नाम है पैक एंड पैक। सो अभी ना ये नई किताब आई है, लेकिन इस टॉपिक पर एक बड़ा सवाल निकलता है, क्या टैलेंट अपने आप सक्सेस दिला देता है? मान लीजिए दो लोग बराबर क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, एक को सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और दूसरे को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, क्या इसका मतलब यह है कि दूसरा कम टैलेंटेड है? नहीं, सक्सेस में टैलेंट के साथ टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, अपॉर्चुनिटी और कभी कभी लक भी काम करता है। और शायद यही रीजन है कि हमें ना किसी अचीवमेंट को देखकर फाइनल रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे की मेहनत, सर्कमस्टेंसेस, सब कुछ समझना चाहिए। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके हिसाब से सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टैलेंट, हार्डवर्क या सही अपॉर्चुनिटी या फिर सही डिसीजन? सो नंबर सेम 3311063 और ये किताब आपको यही सिखाती है जिसका नाम है पैक एंड पैक। जो लेसन इन केमिस्ट्री की ऑथर है वही ऑथर इस किताब की भी है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टेट।

सो कई बार ऐसा होता है आप कोई गाना सुनते हो और अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब किसी सिंगर की आवाज़, किसी गाने का हाई नोट या अचानक आने वाला कोई म्यूजिकल बीट आपको इतना टच करता है कि कुछ सेकंड्स के लिए आप सिर्फ म्यूजिक में खो जाते हो। आज ऐसे बहुत सारे गाने मैंने प्ले किए जो मेरे लिए उतने ही स्पेशल थे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो म्यूजिक ना हमारे इमोशन से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। किसी सॉन्ग की मेलोडी, रिदम, लिरिक्स या उससे जुड़ी कोई पर्सनल मेमोरी हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करती है। सो कुछ लोगों को ऐसे मोमेंट्स में गूजबम्स महसूस हो सकते हैं और ये एक्सपीरियंस ना आपको सिर्फ रेडियो ऑलिव दे सकता है। सो किसी के लिए चाइल्डहुड का कोई गाना, किसी के लिए कोई रोमांटिक मेलोडी और किसी के लिए कोई पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर। सो यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। कभी किसी गाने की एक लाइन हमें किसी इंसान की याद दिला देती है, कभी कोई ट्यून हमें किसी पुराने शहर की याद दिला देता है, कोई जर्नी याद आ जाती है। यानी म्यूजिक सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, कई बार वो मेमोरीज और इमोशंस तक पहुँचने का रास्ता भी है। सो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस गाने पर आपको गूजबम्स आते हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान को वो सॉन्ग बिल्कुल नॉर्मल लगे, क्योंकि म्यूजिक का एक्सपीरियंस पर्सनल होता है। सो फॉर नाउ आई हैव टू से कि खूबसूरत से गानों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। बैक टू बैक बहुत ही अमेजिंग गाने आप सुनेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Kerala's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ.
2: Yes.
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
1: I still can't believe it. No catch.
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे एक साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम भी अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 ये है हमारा नंबर, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
2: यस,
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
0: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
3: 106.3 Radio Olive. Is brought to you by
4: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.

0: आप सभी का एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे जो है एक खबर हमें सुनने को मिली है वो ये है कि बॉसेस जो है जेन जी एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है करके, इनका काम करने का तरीका ठीक है नहीं करके। तो देखिए ये जो है इस पे बहुत डिबेट चल रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज जो है जेन जीज को छोड़ रहे हैं कि यहाँ का वर्क कल्चर ठीक नहीं है करके, कुछ बॉसेस जेन जीज को निकालते हैं कि इनका प्रोफेशनलिज्म ठीक नहीं है करके। तो कौन ठीक है, कौन सही है, कौन गलत है, इस डिबेट को सेटल करने की कोशिश तो मैं नहीं करूँगा। मैं बस अपने थोड़े ओपिनियन जो है यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है जो हमें माननी पड़ेगी वो है कि भाई कई कई जगह पे वर्क कल्चर टॉक्सिक जरूर है, वो तो रियलिटी है, वो मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जेंजीज का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि मिलेनियल्स जो लोग हैं या फिर जो प्रीवियस जनरेशन के लोग हैं उन्होंने काम को एक नज़रिए से देखा है, जेंजीज एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। फ्रांस काफ्का करके एक बहुत ही बड़े ऑथर थे, राइटर थे, उन्होंने अपने जॉब के बारे में बोला था कि दिस इज़ माई ब्रेड जॉब, मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, मुझे इस काम से और कोई लगाव नहीं है। तो जेंजीज भी आजकल जो हैं अपने काम को काम की तरह ही देख रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे नहीं दे रहे और उस काम को करने के लिए जितना एफर्ट वो डालते हैं बहुत अच्छे से डालते हैं। और कुछ लोग देखिए हर जगह होते हैं जो नहीं करते हैं काम ढंग से, वो जेंजीज में भी हैं, बूमर्स में भी हैं, मिलेनियल्स में भी हैं। मगर हाँ जेंजीज का अगर हम देखें तो काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और यही लोग फ्यूचर लीडर्स भी बनने वाले हैं। तो प्रॉबेबली वर्कप्लेस में कल्चर ओरिएंटेड और साथ ही साथ वर्क ओरिएंटेड चेंजेस जो हैं शायद बहुत बड़े लेवल पे आ सकते हैं। और ये बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान। अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में। कतर में पहली बार।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by.
3: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Golden Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie free cash vouchers.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक बात जो है मैंने देखा, बात यह है कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें घोस्टिंग के बारे में लिखा गया था। उसमें लिखा है कि लोग जो है आजकल घोस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कन्फ्रंट करना और चीजों को अपफ्रंट सामने रख के बात करना जो है काफी मैच्योर्ड एक टेक मांगता है लोगों से, और लोग इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो लोग ये कर पाए करके। और अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से बैठ के सोचे तो बात सही है, क्योंकि किसी को घोस्ट करना बहुत आसान है, कुछ बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मगर प्रॉपर तरीके से बात करना, प्रॉब्लम क्या है उसको एड्रेस करना, वे फॉरवर्ड क्या है डिस्कस करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, जो आजकल बहुत लोग नहीं दिखा पाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में सही में बात करनी चाहिए, लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। आपकी राय क्या है इस बारे में जरा मुझे बताइए, 3311063 पर मैसेज कीजिए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

अगर आपको लोगों से चिड़चिड़ होती है, लोगों से क्या आसपास की हर चीज से आपको चिड़चिड़ होती है, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और एक रिसर्च में जो है ये पता चला है कि जो लोग, जिनको आसपास के लोगों से चिड़चिड़ होती है, आसपास के हर चीज से चिड़चिड़ होती है, उन्हें गुस्सा आता है लोगों पे, वो पसंद नहीं करते चीजों को, तो वो हाई IQ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं करके। यानी कि आप एक हाई IQ इंडिविजुअल हो सकते हो, काफी तगड़ा IQ हो सकता है आपका, ऐसा जो है रिसर्च बताता है। अगर आप एक हाई IQ इंडिविजुअल हैं, मैसेज कीजिए मुझे 3311063 पर। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है थोड़ी देर पहले हमने हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स के बारे में बात की थी, जिन लोगों को आसपास के लोगों से और हर चीज से चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है, वो शायद हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। उसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज के बारे में। देखिए, ये एक फिनोमेना है जिसका नाम है मिसोफीनिया। सो मिसोफीनिया एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे एक इंसान को लोगों के सांस लेने पे, खाना खाने पे गुस्सा आ जाता है। कभी कभी कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो ऐसे च्यूइंग साउंड आता है, या फिर जब सांस लेते हैं तो ऐसे सांस लेने की आवाज़ आती है, तो कुछ लोगों को इससे इरिटेशन होती है, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो लोग जो हैं एक फिनोमेना जो है एक्सपीरियंस करते हैं, वो है मिसोफीनिया करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे वैसे, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे कुछ लोगों को। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और कल ना मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एक किताब में पढ़ी थी, ठीक है। उस किताब में लिखा था कि कभी कभी अपने जिंदगी में हम काफी लॉस्ट फील कर सकते हैं, काफी क्या कहते हैं ओवरवेल्म फील कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये सब बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसी चीजें हम महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप चीजें ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जूते रखने के तरीके को ठीक कीजिए करके। और मैंने डिटेल में पढ़ा तो उसमें बताया कि जापानीज घरों में घर के अंदर घुसने से पहले जो है जूतों को अरेंज करके रखा जाता है, और किसी के घर के जूते के अरेंजमेंट को देख के पता चल जाता है कि इस घर में कैसा माहौल है। अगर जूते काफ़ी क्या कहते हैं रैंडम तरीके से रखे हुए हैं, ऑर्डर्ड तरीके से नहीं है, तो फिर पता चल जाता है कि कुछ तो बवाल चल रहा है घर में करके। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे। तो आप अपने जूतों को किस तरीके से रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। और ये माइन्यूट डिटेल्स ही जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं तो लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। और ये बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्ज में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और काफी हार्ट वार्मिंग एक बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो US में एक स्कूल में एक बच्चे को जो है काफी बुली कर रहे थे बहुत सारे लोग मिलके, क्योंकि वो स्कूल में हर दिन एक ही ड्रेस पहन कर आता था। उसको चिढ़ाते थे कि अरे कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो करके। देखिए, बुली करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लोग फन के लिए करते हैं, मगर उसमें कोई फन नहीं है। जब तक तुम विक्टिम नहीं बनते तब तक तुम्हें उसका दर्द जो है समझ में नहीं आता है करके। और स्कूल में तो कूल बनने के लिए लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसी चक्कर में बुली भी कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे एक बच्चे को जो है बुली किया जा रहा था, मगर उसके क्लासमेट्स ने जो है काफ़ी टफ स्टैंड लिया। उसके क्लासमेट्स ने जो है पैसे इकट्ठे करे और उसको नए कपड़े दिलाए और उन बुलीज का मुंह बंद करवा दिया। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जिससे हमें पता चलता है कि दोस्ती जो है ना एक अलग चीज़ है। खून का रिश्ता नहीं है किसी इंसान के साथ, मगर फिर भी उनके साथ एक लगाव है। उनको हेल्प करने का मन करता है, उनको आगे बढ़ाने का मन करता है, उनकी खुशी में खुश होने का मन करता है। जब उनको कोई दुख पहुंचाए तो उस दुख को हटाने का मन करता है। और दोस्ती सही में कभी कभी बहुत ही बढ़िया चीज़ें कर देती है, और उनमें से एक एग्जाम्पल ये है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
4: नीना गुप्ता,
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ओलिव नंबर वन।
7: This hour is brought to you by...
8: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कार्ल बशबी के बारे में, जो एक इंग्लिश एडवेंचरर हैं। इन्होंने 28 साल पहले यानी कि 1998 में इन्होंने डिसाइड किया आई विल वॉक अराउंड द वर्ल्ड, और 1998 में उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। इनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी पुंता अरेनास जिले से नवंबर 1, 1998 को, और इनका गोल था हल इंग्लैंड में पहुंचना यूजिंग ओनली ह्यूमन पावर वाइल मेंटेनिंग अ कंटिन्यूस रूट। ठीक है, तो इस जर्नी को कवर करते करते उन्होंने ऑलमोस्ट 36,000 माइल्स जो है कवर किए, अमेरिकाज, एशिया, यूरोप, इन कॉन्टिनेंट्स में इधर उधर वो चले। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो 2006 में आया जब इन्होंने बेरिंग स्ट्रेट जो है क्रॉस किया। बेरिंग स्ट्रेट जो है रशिया और अलास्का के बीच का जो एरिया है वो है, तो विंटर के टाइम में वो पूरा ऐसे जम जाता है, तो उस जमे हुए फ्रोजन बेरिंग स्ट्रेट को चल के उन्होंने पार किया। और उसके साथ साथ 2024 में बशबी और एंजेला मैक्सवेल करके एक और एडवेंचरर थी, उन्होंने कैस्पियन सी को क्रॉस किया स्विम करते हुए, ताकि इस एक्सपेडिशन के ह्यूमन पावर प्रिंसिपल को वो प्रिजर्व कर पाए। और अक्टूबर 2026 में वो इंग्लिश कोस्ट में पहुंचे और यहाँ से नॉर्थवर्ड जो है उनकी जर्नी है हल इंग्लैंड तक। इस पूरे एक्सपेडिशन का आइडिया बहुत सिंपल है, कीप मूविंग फॉरवर्ड वन स्टेप एट अ टाइम अंटिल द रूट रीचेस होम। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: पे जस्ट 10% एडवांस एट जॉया लुकास टू बुक योर फेवरेट ज्वेलरी नाउ।
3: नाउ वी स्टिल हैव टाइम फॉर द फेस्टिव सीजन।
2: दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू शुड सिक्योर द बेस्ट गोल्ड राइट नाउ। बुक इन एडवांस एट जॉया लुकास एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
1: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers. Yeah.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हाय, मैं हूँ सारिका. सारिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM, Jio Bindaas.

बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अरे आई नो, आप लोगों के मैसेजेस मुझे बता देते हैं जो मेरे आने से पहले आ जाते हैं। सिमरन कौरियाओ के साथ जबरदस्त इवनिंग्स जो है वो शुरू हो चुका है और बहुत ही मजे आने वाले हैं क्योंकि 4 घंटे अब नहीं है बेबी। लेकिन आप बताओ, पूरे दिन ने आपको मजे करवाए कि नहीं करवाए, या फिर आपके किसी ने मजे ले लिए और दिमाग की बैंड बजी हुई है और आपको बस अभी के अभी क्या चाहिए, एक कप चाय चाहिए कि भाई कड़क मिल जाए और बस, या फिर किसी दोस्त के साथ कड़क पीते पीते वेंट आउट कर लूं, है ना, ऐसा सीन होगा। तो ऑफिस को आप पीछे छोड़ दीजिए, ऑफिस का सीन आज पूरे दिन में हो गया है और आज बस आज का दिन बीत गया, कल जब होगा तो वीकेंड आपके पास में होगा। तो इतनी मोटिवेशन काफी है या और दूं? अरे अभी टाइम है अपने पास, बहुत मोटिवेट करूंगी आपको मैं। लेकिन उससे पहले आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस मुझे भेज दीजिए, अपना दिन उसके बारे में जो बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, वॉइस नोट के थ्रू बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 3311063 पर जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداس. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
2: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
3: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
2: Attention Qatar, the all-new GAC GS7 2027 ab Domesco GAC showroom mein available hai. This premium SUV is perfect for city drives aur aapki outdoor glamping adventures ke liye. Get an incredible 1020 km combined range, plus customize the animated LED headlights. All new GAC GS7 2027 starting from just 129,900 riyal.
3: To intezaar kis baat ka? Book your test drive today. Visit the GAC showroom at East Industrial Road. Call 800-8123.
4: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सोनियो की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। सो क्या है कि आजकल इतने सारे स्कैम हो रहे हैं भाई, अगर आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपके हाथ में इंटरनेट है, तो कभी भी एक क्लिक पे कुछ भी हो सकता है। अब बड़े जो है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ में भी आजकल 24 घंटे मोबाइल रहता है। बच्चों को मोबाइल ना दो तो बच्चे जो कलेश कर लेते हैं, रोने लग जाते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पेरेंट्स को स्पेशली बोला है, क्योंकि ये अवेयरनेस कैंपेन अपने कदर में चल रहा है ना, कि आपके बच्चों के हाथ में जब मोबाइल होता है तो वो क्या यूज कर रहे हैं, कौन से लिंक पे क्लिक करें, ये सारी चीजों की नजर आप पे होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी साइबर अटैक करने वाले होते हैं वो मतलब हर जगह पे बैठे हुए हैं यार, तो किसी को कुछ पता नहीं लगता। बच्चों को तो स्पेसिफिकली जो है वो पता नहीं लगता, एक मिनट में वो एक्सेप्ट कर देते हैं हर चीज के ऊपर, क्योंकि उनके हाथ से मोबाइल चला ना जाए, है ना। सो थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रखिए, आपके बच्चे इंटरनेट पर जो है वो क्या ओपन कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जरूरी है यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: नेस्टोल लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
1: लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक यानी सिर्फ 4 दिन।
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
1: नेस्टो मोर हैप्पीनेस मोर क्वालिटी लोअर प्राइसेस।
3: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

कतर में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदलते मौसम का एहसास आपको दिलाती हैं पहले से ही। ओपन हो रहा है जहां पर आपको बहुत सारी राइड्स मिलती है क्योंकि मौसम अच्छा होता है, सब लोग बाहर होते हैं, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, एकदम माहौल जो है वो लुसेल विंटर वंडरलैंड में बढ़िया वाला होता है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, ये 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और अगले साल 1 मई तक चलता रहेगा। तो तैयार हो जाइए कतर में विंटर के लिए। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: रातों में वी नीड टू टॉक यार देखो मैं कल से ना बारिश वाले वीडियोस देख रही हूँ पता नहीं कौन कौन से अपने कतर के इलाकों में बारिश हो रही है मुझे कहीं पे नहीं एक बूंद तक नहीं गिरी है यार जैसे हम कतर बोलते हैं आई लव कतर तो कतर के बीच में सारा कतर आ जाता है हमको एक एक एरिया का नाम नहीं लेना पड़ता तो बारिश हमारे साथ ही पार्शियलिटी क्यों कर रही है क्यों बारिश हो रही है यार बारिश हर जगह बारिश मतलब बारिश हर जगह पड़नी चाहिए ना यार मैं नहीं यार मतलब अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है अगर आपके एरिया में कहीं पे बारिश हुई थी तो प्लीज मुझे बता दीजिए कैसा फील था यार आपका
1: जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही
0: बिल्कुल मैं बारिश को बोल रही हूँ कि यहीं पे मिलना आके यार तुमको यार क्या ही चल रहा है यार मतलब सबके साथ बारिश मतलब सबको मिलनी चाहिए ना यार अब मैं वीडियोस देख के क्या करूँ मेरे को तो फील ही नहीं आ रही है मैं फील भूल गई हूँ बारिश की यार मौसम के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में तो बोल पावे ना बोल बहुत ही प्यारा गाना कमाल खान की आवाज यार ये फिल्म देखनी है यार मैं

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
3: यस बेबो।
2: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
3: यस।
2: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।

0: ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ 6:05
1: ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ brought to you by Nanatal Pahar the ultimate Katri adventure Sukh Waqif Alkhol
0: to phir kya kehta hai bahar ka mausam baby
2: mausam aapke suno
0: गर्मी जो है वो नहीं लगती, लेकिन कल काफी ज्यादा हीट थी, है ना। विंड जो है 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी 67% है और आज का मिनिमम टेम्परेचर है 20।

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े 6:19 19 सेकंड स्टूडियो की

0: चाहिए बिग बॉस के हाउस में। ओए ओए ओए, नकुल और गुल्लू की लड़ाई होगी। नकुल जो है वो अभी एक ही दिन के लिए मतलब एक ही दिन हुआ था बिग बॉस में आए थे, दोनों हरियाणा से गरम खून, और दोनों की होगी लड़ाई, हाथापाई हो गई है। और अभी पता नहीं है कि आज जो है वो इविक्शन होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस के घर पे हाथापाई अलाउड नहीं है भाई। मुंह से जितनी मर्जी लड़ाई कर लो, लेकिन हाथ एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। सो वो सीन हो गया, अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या सीन होता है वो आज के एपिसोड में पता लगेगा, वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आजकल मैं बिग बॉस देख रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो बिग बॉस को इस बार फॉलो कर रहे हैं? 3311063 पर बताओ मुझे।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

योगिता दी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तुहाडे नाल। 6:29 नहीं, सीधे 30 मिनट हो चुके हैं। और बताओ क्या हाल चाल है आपके, और ये क्या हाल होता है जब कोई आपके सामने कुछ जेन ज़ी लिंगो यूज करता है और आपको पता नहीं है यार। डू इट फॉर द प्लॉट, ओके। सो डू इट फॉर द प्लॉट का मतलब ये होता है कि कोई डिसीजन मान ले आपने किया है और आपको पता है इसका बैड रिजल्ट भी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी देखना चाहते हो कि यार कितना बुरा हो सकता है, क्या ही जाएगा। सो डू इट फॉर द प्लॉट, ये आप जो है वर्ड, जो लाइन है वो यूज कर सकते हो। अगर आपके सामने करे तो आपको फिर पता होना चाहिए, मैंने बता दिया है आपको। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आप मुझे भेज रहे हैं। लेकिन ये बीच में सॉन्ग रिक्वेस्ट किसने कर दिया यार? दोस्त, सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है, कल तक का इंतजार कर लो, कल थर्सडे है ना, कल मूड अच्छा हुआ तो आप लोगों के गाने जो है वो जरूर प्ले कर।

0: बिल्कुल वल्ला ऑफर्स जो है वो है, मैं नेस्टो हाइपरमार्केट में आज जाके आई और बहुत सारी बढ़िया ऑफर्स है, बहुत जल्दी वो वीडियो जो है वो अप हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाला मौका है अपनी ग्रोसरी शॉपिंग को, सारी चीजों को प्लान करने का, क्योंकि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, चाहे वेकेशन का भी प्लान कर रहे हो तो वहां का सामान भी आपको वहीं पे मिलने वाला है। सो ये वीडियो बहुत जल्दी आउट होगी, क्या है ये ऑफर्स, क्या है ये डील्स, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Radio on

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: नेस्टोल लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
1: लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक यानी सिर्फ 4 दिन।
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
1: नेस्टो मोर हैप्पीनेस मोर क्वालिटी लोअर प्राइसेस।
3: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
5: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
6: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना? उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
7: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
6: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थी।
8: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
7: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
6: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है। वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
9: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स बरवा विलेज दोहा।

श्रीकाल सिमरन कौर है, थोड़े नाल 7:06 और 25 सेकंड हो चुके हैं और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कमाल की फिल्म थी, हम माफ कहे कौन, और इस फिल्म के बारे में बात करें, ये एक ऐसी पहली फिल्म थी जिसने मतलब 1 मिलियन के ऊपर जो था वो पैसा कमाया था। ओके, और स्पेशली ये दीदी तेरा देवर दीवाना, इसमें जो साड़ी पहनी थी ब्राइट पर्पल कलर की, जिसमें बैकलेस खिड़की ब्लाउज, जिसका नाम था खिड़की ब्लाउज वाला डिजाइन उसमें पहना था, तो मतलब लड़कियां तब पागल हो गई थी और हर जगह पे न्यूज़पेपर वगैरह में भी माधुरी की इस साड़ी का बहुत ज्यादा चर्चा जो था वो चल रहा था। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये जो इसकी कॉस्ट थी वो 1.5 मिलियन थी। और ये जो फिल्म है, जब स्टार्टिंग में ओरिजिनली स्मॉल थिएटर्स में इसको रिलीज किया गया था, जिन्होंने ये अग्री किया था कि भाई वो अपनी फैसिलिटीज को ना अपग्रेड करेंगे। अब जैसे ही फिल्म चली तो भाई साहब रिलीज होने के बाद इसकी मांग जो थी वो बढ़ गई, तो बहुत सारे थिएटर्स ने अपग्रेड किया और ये फिल्म की डिमांड बढ़ी और टिकट के प्राइस जो थे वो भी बढ़ा दिए गए थे। सो यस, और भी बहुत सारी बातें इस फिल्म से जुड़ी हुई मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: नेस्टोल लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में
1: लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक यानी सिर्फ 4 दिन
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा
1: नेस्टो मोर हैप्पीनेस मोर क्वालिटी लोअर प्राइसेस
3: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटूई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
4: हाय एवरीवन मैं हूं अरमान मलिक
5: नंबर
4: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क
5: रेडियो ऑलिव नंबर 1
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर 1 आरजे
5: सिमरन के साथ
7: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: शादियों का है जमाना यार। मतलब ये जो फिल्म थी जिसमें एकदम फैमिली वैमिली सब दिखाई गई थी, कोई वायलेंस वगैरह नहीं दिखाया गया था, और वेडिंग को एक मतलब बड़ी सेलिब्रेशन के लिए मतलब फेस्टिवल के तरीके से दिखाया गया था। यहीं से हम आपके हैं कौन फिल्म से बिग फैट वेडिंग वाला जो ट्रेंड था ना वो चला था। और मतलब शादी सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, इसमें बहुत सारी सेलिब्रेशन जो है वो होती है। लता जी ने इस फिल्म के 10 या 11 गाने कुछ गाए थे, और उस टाइम पे मतलब उनका था कि भाई लॉन्ग रिटायर्ड एक्सेप्ट, मतलब कि वो अवार्ड वगैरह एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी, लेकिन भाई उन्होंने जब ये गाना गाया ना दीदी तेरा देवर दीवाना, सो उनको फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जो था वो मिला इस फिल्म के लिए। और अगर बात करें MF हुसैन सर की, उनको आप लोगों को पता है कि वो माधुरी सर के बहुत बड़े फैन है, माधुरी मैम के बहुत बड़े फैन है, सो उन्होंने ये फिल्म 85 टाइम्स जीती देखी थी। ओ माई गॉड, मतलब पागलपन कहते हैं ना कि आप किसी के पीछे इतने पागल हो जाते हो कि अब वो फिल्म आप बार बार जो है वो देखते हो। सो या सूरज बरजाती सर ने 1 साल 9 महीने लिए थे कम से कम इस फिल्म की स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के लिए, और इस फिल्म को स्क्रिप्ट से लेकर बनने तक 4 साल लगे थे। सो या माधुरी दीक्षित ने इसमें सलमान खान से ज्यादा फीस जो थी वो चार्ज की थी। और इस फिल्म का सीन एक ऐसा हुआ जिसमें रेणुका शाह ने रहती है, माधुरी की बहन रहती है, जब उसकी डेथ हो जाती है ना तो रीमा लागू का इमोशनल सीन रहता है तो उनको रोना होता है। भाई वो इतनी ज्यादा इमोशनल होगी कि वो कंटिन्यूसली रो ही जा रही थी, फिर रेणुका शाह ने उनके पास आई कि भाई मैं जिंदा हूं ठीक है, कोई मामला हुआ नहीं है, इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सो या होता ना कि फिल्में बन जाती है लेकिन उनके पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं जो कि किसी को नहीं पता होती, बस वही कहानियां हम बताते हैं आप।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड with patience, served with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif, Alkhor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: जस्ट फील लाइक योर होम
8: ऑन द नंबर 1 रेडियो।
9: ऑलिव सुनो रेडियो।

0: स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं एंड अब टाइम है
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: गुस्सा जो है ना एक बहुत बड़ी चीज होती है। गुस्सा जो है वो आपसे बहुत सारे काम जो है वो करवाता है। और गुस्से में इंसान कहते हैं ना कि यार जब गुस्सा शांत हो जाए इंसान को तभी बात करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि गुस्से जब आपको बहुत सारा गुस्सा आया होता है तब आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, लेकिन जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो आपको लगता है यार ये चीज़ें और थोड़ी सी नॉर्मली जो है वो हो सकती थी। लेकिन जब इंसान को गुस्सा आता है तब जब इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल करके अपनी ज़बान को कंट्रोल करना सीख जाए ना तो लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा रिश्ते जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से की वजह से ही खराब होते हैं।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
2: यस बेबो
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ
2: यस
1: कैच क्या है
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
3: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਫਿਰ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी कभी रेडियो पे ले लूं तो आप अभी के अभी नाम लिख के मुझे अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा यार। सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3, जी हाँ 3311106 3, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दीजिए। अच्छा चलिए मैं नाम लेना स्टार्ट कर रही हूँ। शम्स, इब्राहिम, रेवा, इद्रीस, जोई, महबूब जट, हानिया का आज हैप्पी वाला बर्थडे, हानिया हैप्पी बर्थडे टू यू, सफदर अली जी बहुत बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार जी बहुत बहुत शुक्रिया, अली जी थैंक यू सो मच, हिमकुश जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजो 3311106 3 पर। अमन जी थैंक यू सो मच, हुजैफा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, करण जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, इद्रीस जी बहुत बहुत शुक्रिया, अबरार जी थैंक यू सो मच, जुल्फी जी थैंक यू सो मच, नजीमुल्ला जी, अब्दुल्ला जी थैंक यू सो मच, यम जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद परवेज जी थैंक यू सो मच, सुरेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, कामरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, क्विकली भेजते रहो, मोहम्मद वसीफ जी, असद जी थैंक यू सो मच, अतर अब्बास जी थैंक यू सो मच, विद्स थैंक यू सो मच, मून थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मुबीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार जी ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ, अतर अब्बास जी ऑलरेडी आपका नाम मैं ले चुकी हूँ, स्मिता सजू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मून बहुत बहुत शुक्रिया, नवेद जी बहुत बहुत थैंक यू, अभी थैंक यू मत लिखो यार, ये सब मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ आप लोगों के नाम पे। वसीफ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, सबा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, सिमरत कौर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नईम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बेटा आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला ही मुझे बना लो।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
2: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
1: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थी।
3: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
2: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
4: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
5: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
1: नेस्टो लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
0: लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
1: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
0: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस, मोर क्वालिटी, लोअर प्राइसेस।
2: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
2: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
3: Yes.
2: Catch kya hai?
3: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
2: I still can't believe it. No catch.
3: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
4: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक, 106.3 FM Radio Olive, Jio Bindaas.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: एक नंबर गाने जो है वो चल रहे हैं। देखो म्यूजिक आप रेडियो ऑलिव पे सुनते हो है ना, सो आप जो हमारी एप्लीकेशन अगर अपने फोन में डाउनलोड कर लेंगे तो ये जो रेडियो आप गाड़ी में सुनते हो या घर पे आपके रेडियो है वहां पर सुनते हैं, तो जहां पे भी आपका मन करे, आप कतर से बाहर भी चले जाएं, जब भी आपका देसी म्यूजिक सुनने का मन हो, हमारा शो सुनने का मन हो, आप छुट्टियों में चले जाएं, तो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आप कभी भी सुन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कोई मैसेज दिया या फिर कोई गाना डेडिकेट किया जो कि आपसे यहाँ से दूर है ना, तो वो मैसेज वो सुन पाए कि आपने क्या बोला है उनके लिए, है ना, तो वो भी ये एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करेंगे तो हमारे रेडियो ऑलिव को आप सुन सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप हमारे सोशल मीडिया पे भी हमको फॉलो करिएगा, एंड उसके साथ साथ आप जो है हमारे बहुत सारे से कॉन्टेस्ट होते हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू ही होते हैं, है ना, और रेडियो पे भी होते हैं लेकिन रेडियो के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी होते हैं। तो आज या कल में एक आज रात या कल सुबह एक वीडियो भी अपलोड होने वाली है जहां पर लाइक कॉमेंट और करके सिंपल सा फंडा है शेयर करके आप गिफ्ट जो है वो जीत सकते हैं, लेकिन वो वीडियो कौन सी होगी आपको पता लगेगा बहुत ही जल्दी। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जी वो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

मन ये मेरा चार साल हो गए हैं, चार या पता नहीं काउंट भूल गई हूँ मैं, ठीक है, चार या पांच साल पहले मैंने ये फोन जो था वो लिया था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ये फोन है बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में ना वो बहुत ज्यादा वो हो गई है कि यार जब नया आईफोन जो है वो लॉन्च होगा हर किसी के पास जो है वो होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस दौड़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा लेजी हूँ कि नया फोन लेना पड़ेगा, उसमें नई सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, सारी चीजें ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ये फोन एकदम बढ़िया काम कर रहा है और मेरा कोई भी मन नहीं है फोन को चेंज करने का कि ठीक है नया मॉडल आ रहा है, हर कोई इसको बोल रहा है अरे ये वाला कलर वो वाला कलर ये नया फीचर नहीं। टू बी मतलब मेरे को नहीं मन करता है फोन चेंज करने का। आप में से कितने लोग हैं जो कि मेरे साथ अग्री करते हैं कि वो इसलिए नहीं फोन अपना चेंज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा, इस एक फोन में बहुत सारी चीजें आपने सेट करके रखी हुई हैं, जब नया फोन लेंगे तो फिर सब कुछ सिरे से करना पड़ेगा। सच्ची बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। आपका क्या कहना है?

0: वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
1: रेडियो
0: 106.3 जे ओ बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: बरेली की बर्फी से आप ये गाना सुन रहे थे। मोबाइल फोन के बारे में कि यार नया नया मार्केट में फोन आता रहता है, मेरा फोन चेंज करने का मन नहीं करता। मैं 4 साल से एक ही फोन यूज कर रही हूँ और उसका कैमरा बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है और अटैचमेंट भी हो जाती है यार फोन से भी, और मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट दिमाग लगाने को मन नहीं करता है कि यार फोन चेंज किया जाए, कौन इतना टेक्निकलिटी जो है वो करेगा। सो मैं आप लोगों से भी पूछ रही थी।
1: नहीं उस लिए तो नहीं, मेरा तो मन नहीं करता है, नए नए फोन लेते रहो, जो फोन है यार तुम वही सही से यूज कर लो,
0: है ना।
1: कुछ शौक नहीं है, जो नया फोन आया बस जस्ट दिखाने के लिए लेना, बस अपने काम के लिए फोन है।
0: थैंक यू सो मच राहुल, एंड कल अकेले नहीं आऊंगी, कल वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी, तो तैयार रहिएगा। लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: एक सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

0: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
1: नेस्टोल लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
0: लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
1: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
0: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस, मोर क्वालिटी, लोअर प्राइस।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, Radio Olive 106.3.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
2: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
1: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थी।
3: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
2: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
4: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive Gio Bindas.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।
2: चांदनी

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।
2: चांदनी

Olive 106.3 FM Gio Bendaz.